0: Looking to stay connected with the Hills Shire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
1: I was lucky that when I picked up the phone that day to call my best friend, that he answered.
2: Despite almost every Australian knowing someone who has been affected by suicide, we still don't talk about it. Lifeline Australia's new podcast, Holding On To Hope, shares stories of survivors and the connections made to find the hope to keep living. Because when we talk about suicide, we realise our capacity to support those around us. Holding On To Hope. Lifeline.org.au/podcast.
3: आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सर्वोत्तम सुरक्षा देती है। आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से इसकी बुकिंग करें। healthdirect.gov.au/nswfluvaccine पर जाएं।
4: Alive 90.5.
5: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे टीचर्स को और हमारे फादर्स को, क्योंकि आज टीचर्स डे है। पहला सेगमेंट हम डेडिकेट करेंगे टीचर्स। तो मैंने पूछा था कम्युनिटी से कि कोई मैसेजेस आप अपने टीचर्स के लिए बोलना चाहें तो भेज सकते हैं, तो कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। पहला मैसेज है आरती जी की तरफ से, कहती हैं, हैप्पी टीचर्स डे टू आर अमेजिंग एजुकेटर्स। टेक्स्ट बुक पढ़ाना तो आसान है, बट यू टॉट अस हाउ टू नेविगेट लाइफ। थैंक यू फॉर बिल्डिंग आवर फ्यूचर। That is very true, आरती जी। हमारे टीचर्स ने हमारे लाइफ को मोल्ड किया है और हमारे सोच को मोल्ड किया है। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो छाप छोड़ जाते हैं हमारे लाइफ में। बाकी के मैसेज पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगला मैसेज है भावना जी का, वो कहती हैं, थैंक यू टू ऑल द अमेजिंग एजुकेटर्स हु डेडिकेट देयर टाइम एंड एनर्जी इन टीचिंग आवर चिल्ड्रन लैंग्वेज and dance and keeping them connected to our roots. This message is dedicated to all the language, the music and the art and the dance teachers who teach our children the Indian art and culture. So thank you so much for supporting our children. And on this note, I would love to actually do a shout out to my daughter's music teachers, Izumi and Prema ji. दोनों ने इतने प्यार से और डेडिकेशन के साथ मेरी बेटी को गाना सिखाया है। एक तो कर्नाटिक म्यूजिक सिखाती हैं, दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाती हैं, और इतने प्यार से सिखाती हैं कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो थैंक यू फॉर ऑल योर डेडिकेशन एंड द लव दैट यू पोर इनटू आवर चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट मैसेज आया है राजेश जी की तरफ से, वो कहते हैं, टू माई फेवरेट टीचर शर्मा जी, Thank you for not giving up on me when my grades were low and my confidence was shaken. आपने मुझ पे तब भरोसा किया जब मैंने खुद पर से उम्मीद खो दी थी. Thank you for seeing my potential before anyone else did. Happy Teachers Day to you. I will never ever forget you in my life. Is a very beautiful message, Rajesh ji. अगला message आया है रवि जी की तरफ से. वो कहते हैं, हैप्पी टीचर्स डे टू कामत सर। सर, आई रिमेम्बर बैक इन 11 व्हेन आई फेल्ड माय केमिस्ट्री मिड टर्म एंड वांटेड टू ड्रॉप द सब्जेक्ट। आपने क्लास के बाद मुझे बिठाकर कहा था, बेटा तुम मेहनत से डर रहे हो, सब्जेक्ट से नहीं। दैट वन लाइन कंप्लीटली चेंज माय एटीट्यूड। टुडे बिकॉज ऑफ योर बिलीफ इन मी आई एम परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग डिग्री हियर इन सिडनी। Thank you for never giving up on me, sir. Really, really love you. That is a very beautiful message, Ravi ji. Last jo message aaya hai, wo aaya hai Anjali ji ki taraf se. Wo kehti hai, huge happy Teachers Day to Aarti and Rekha from our local dance academy. Living away from India, I was always worried that my daughter would lose touch with her roots. But the patience, love and passion with which you teach Kathak every weekend has changed everything. आप सिर्फ डांस नहीं सिखाती हैं, आप हमारी मिट्टी की खुशबू को यहाँ जिंदा रख रही हैं। Thank you for being such an incredible guide to our children. That is so lovely, Anjali ji. Ye hamare sari teachers ko dedicated hai. Aur aapka love, aapka passion, aapka dedication never goes unnoticed. Thank you so much and happy, happy Teacher's Day to you. Ek recorded message hai. Uske baad main gana play karungi, which was one of the dedications that came out. So, thank you and keep listening.
3: Ye recorded message hai Anand Tyagarajan ji ki taraf se sare teachers ke liye.
6: Special teachers are divine and matchless gurus, mentors. They take high level of care to make the students to learn with a higher level, and their aim is to create wonderful situation to the special students. The vision, the care, the tremendous support they give will create long-standing results and consequences in the life of those special children. Their services are always deserving to warm appreciation by people and community. We take this time, this opportunity to thank all of them, and we are very much endowed with our own responsibilities for the care of special students. Let us give a great salute to our teachers and creators of future generations. Thank you.

0: something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
1: Station sponsor.
2: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
3: Alive 90.5.
4: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ. और टीचर्स डे के मैसेजेस के बाद हम पढ़ेंगे कुछ मैसेजेस जो आए हुए हैं फादर्स के लिए. तो पहला सेट ऑफ मैसेजेस है बेटियों की तरफ से अपने फादर्स के लिए. तो इंटरेस्टिंगली आए हैं तीन मैसेजेस बेटियों की तरफ से और तीन मैसेजेस बेटों की तरफ से. तो पहला मैसेज है जारा का अपने पापा के लिए. कहती है, हैप्पी फादर्स डे पापा. इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यू हैव बीन माय कांस्टेंट सेफ्टी नेट. व्हेनेवर लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग, आपका एक फोन कॉल और वो लाइन, टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना, सारी प्रॉब्लम दूर कर देती है. थैंक यू, यू आर माय एब्सोल्यूट हीरो. दैट इज सो ट्रू जारा. Our fathers are our heroes forever. दूसरा मैसेज आया है रेखा जी की तरफ से. कहती है, to the man who never said no to my education or my career, even when society had questions. Papa, your progressive thinking made me the independent woman that I am today. Distance चाहे जितनी भी हो, my heart is always home with you. I love you, Dad. That is such a beautiful message, Rekha. और जो लास्ट मैसेज है वो है प्रिया की तरफ से. वो कहती हैं, हैप्पी फादर्स डे टू माय अमेजिंग डैड. आपने अपनी जरूरतें हमेशा पीछे रखी जस्ट टू फुलफिल माय विशेस. थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू स्टैंड टॉल, स्टे ग्राउंडेड एंड वैल्यू आवर फैमिली ट्रेडिशंस अबाउट एवरीथिंग एल्स. हैप्पी हैप्पी हैप्पी फादर्स डे पापा. सो दैट is such a beautiful message, and really happy Father's Day to all the amazing dads jo parde ke piche silent kaam karte hain aur hame hamesha confidence dete rehte hain ki hum aage badh sakte hain aur hum jis jo chahe wo kar sakte hain. So thank you so much to all the amazing dads and the amazing heroes. You are our real time superheroes in our life. Thank you so much for doing everything that you do silently. ये conclude करता है ये वाला segment. तो इस message के साथ हम अगला dedication play करेंगे, लेकिन उसके बाद वापस आते हैं कुछ messages के साथ जो बेटों ने अपने पिता को दिया हुआ है. So say stay tuned and come back after the song.

0: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
1: Station sponsor Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you, 9604 9604. स्टेशन स्पॉन्सर
2: टीकाकरण खसरे काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करते हैं अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चों को समय अनुसार सभी टीके लग गए हैं
3: अलाइव 90.5
4: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और इस सेगमेंट में हम पढ़ रहे हैं मैसेजेस फ्रॉम सन्स टू देयर फादर्स तो पहला मैसेज है अमित जी की तरफ से ये कहते हैं हैप्पी फादर्स डे डैड दो सूटकेसेस में आपने आपकी पूरी जिंदगी पैक करके यू मूव टू ऑस्ट्रेलिया अ न्यू कंट्री जस्ट टू गिव अस अ ब्राइटर फ्यूचर वी नो इट वाजंट इजी पापा बट यू मेड इट लुक एफर्टलेस थैंक यू फॉर एवरी सिंगल अनस्पोकन सैक्रिफाइस अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू यू थैंक यू अमित जी दैट्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज दूसरा मैसेज आया हुआ है नीरज जी की तरफ से कहते हैं ग्रोइंग अप मुझे लगता था आप बहुत स्ट्रिक्ट हो एस्पेशली अबाउट माई स्टडीज बट नाउ दैट आई एम अ पापा माई सेल्फ एंड आई एम स्टेपिंग इन टू दैट वर्ल्ड आई अंडरस्टैंड द इमेंस लव बिहाइंड योर डिसिप्लिन आई होप आई कैन बिकम इवन हाफ द मैन यू आर हैप्पी फादर्स डे पापा दैट इज अ ब्यूटिफुल मैसेज नीरज जी और जो लास्ट मैसेज आया है अपने पापा को पापा के लिए है रितेश जी की तरफ से वो कहते हैं हैप्पी फादर्स डे टू द मैन हु टॉट मी हाउ टू फेस चैलेंजेस विद अ स्माइल हाउ टू कीप माय वर्ल्ड और हाँ दुनिया के सबसे बेस्ट चाय कैसे बनानी है यू आर माय एंकर डैड चीयर्स टू यू टुडे एंड एवरी डे एंड आई मिस यू आई होप यू कैन कम एंड बी विद अस फॉरएवर वेरी वेरी सून तो आई होप And pray, Ritesh ji, that your father can come and be with you very soon. So happy, happy Father's Day to all the fathers, all the amazing fathers. Agla dedication sune, aur fir hum wapas milte hain.

0: tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
1: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं। आपके लिए कौन सा टीका सही है? इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें।
2: Alive 90.5.
3: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मेरा ऑलमोस्ट बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है लेकिन आज इतने जो ब्यूटीफुल मैसेजेस आए थे ये सारे सुन के दिल खुश हो गया थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज मैसेजेस एंड होपफुली फॉर द नेक्स्ट ईयर वील हैव मोर मैसेजेस दैट विल कम थ्रू एक समझने की बात ये है कि हमारे माँ बाप जो हमारे पहले पहले गुरु होते हैं लाइफ का जो पहला लेसन चलना पहला जो बात करना ये सारा हम उनसे सीखते हैं बट जो हमारे क्लासरूम के जो टीचर्स होते हैं वो हमारे होराइजन्स को हमारी पर्सपेक्टिव्स को चेंज करते हैं और हमें क्वेश्चन करना सिखाते हैं हमें सोचना सिखाते हैं तो ये दोनों ही हमारे लाइफ में इररिप्लेसेबल हैं ये दोनों रोल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि मैं बता नहीं सकती एक हमारा जो फाउंडेशन बिल्ड करता है और दूसरा हमें उड़ना सिखाता है तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और दोनों को बड़ा बड़ा सल्यूट एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स हु आर देयर हु आर लाइटिंग लैंप्स ऑफ नॉलेज एंड इक्वली बिग थैंक यू टू ऑल द फादर्स हु आर द साइलेंट सपोर्टर्स आपको मेरी तरफ से इंडिया कनेक्ट की तरफ से और अलाइव 90.5 की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे एंड हैप्पी फादर्स डे कीप स्प्रेडिंग द लव स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू सम मोर ऑफ द ब्यूटीफुल डेडिकेशंस दैट वी हैव गॉट बट मैं आपसे विदा लेती हूँ इस हफ्ते के लिए थैंक यू एंड कीप लिसनिंग एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट वीक